आपे साजे करें आप जाई पर रखे आप तेस विजन तू पाए के देखे था प्यु थाप के सुनो कहिए लाल का सब कुछ आपे आप पौड़ी वडे क्या वड़े आई किच कहना कहना ना जाए

वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रसिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीता, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जे। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाहा दान, पुरुषा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल, धर्म का जयकार, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। सिखां दा मन नीमा, मत उच्ची, मत

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जब लो नहीं पागल लारे उदय तब लो प्रमते फिरते बहुताया काल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछुताया तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनाया जप आओ जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयाओ मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया दस्तगीर होए पंज पीर हर गुर हर गोविंद अतुला दीन दुनी दा पात साहो अडोला नस वन्यहो किल विखो करता कर आया दूत है दहन पाया गोविंद प्रगटाया पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट कर मूरत हर गोविंद सवारी चली पीढ़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी पुछन सिख अरदास कर छे महला तक दर्श निहारी अगम अगोचर सतगुरु बोले मुखते सुनहो संसारी कल युग पीढ़ी सोडिया निहचल नीव उसार खलारी जोग जोग
सतगुर धरे अवतारी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले, राखहु राखनहार दयाला, नानक कर के गोले, अंदर सच्चा नेह लाया, प्रीतम आपना तन मन हुए निहाल। जा गुर देखा सामने, सुकहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, होवा सिफत खसम दी, नूर अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सत

सतगुर मेरा सदा सहाय, जिन दुख का काटिया केता। मेरा लागो राम स्यो हित, सतगुर मेरा सदा सहाय, जिन दुख का काटिया केता।

सतगुर साचै दिया भेज, चिर जीवन उपजा संजोग, उदरे माहे आए किया निवास।

रंग प्रंग नेक न जपन कर चबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब की तेरे वास तेरा कर भला तेरे घर नंद बधाई तुद कर मान मत्ता तेजी अपना।

जिया अंदर जियो, सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे बस, तेरा कर पला, तेरा कर आनंद वधाई तुद कर। मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक।

जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज बिडान। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखान। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबान। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बेजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तेत सरवरड़ भई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया। पांक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले। मान एक न चेत समूढ़।

पूछै तब चरणन मन रहै हमारा अपना जान करो प्रतपार हमरे दोष्ट सवै तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी वसै मोरो परिवार सेवक सिख सवै करतार मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन को आज संघरियै पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दे मुझे उवरिय मरण काल का त्रास निवरिय हूजो सदा हमारे पच्छा सिरियस तुझ जो करियो रक्षा राख लिहो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दास कांता काल पाए ब्रह्मा बप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मो भद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपार जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्वकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा किह विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूप अंडज जेरज सेत जकीनी उतपुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव आव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठवाते उत्पाता सकल मलेश करो रण घाता जे अस तुझ तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हार हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्व सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उवार जिन नर नाम तिहारो कहा।

सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां, शब्दो तां गावहो हरि केरा मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु वसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देहे सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ इह वडियाइया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते

परम पुल संसार गुरबिन कोय न उतरस पार रहाओ भूले का गुर मार्ग पाया अवर त्याग हरि भगति लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गुर पूरे की बेअंत वडाई गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास अंधकार में पया प्रगास जिन किया सो गुर ते जानिया गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया गुर करता गुर करना जो गुर परमेश्वर है।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखहो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखहो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातिसा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातिसाहु, सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु। सज्जन सच्चा पातिसाहु, सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवा। मोहे मसकीना प्रभ नाम आधार, खाटन कौ हार हार रोजगार। संचन कौ हर एको नाम, हलत पलत ताकयावै काम। मोहे मसकीना प्रभ नाम आधार, खाटन कौ हार हार रोजगार। संचन कौ हार एको नाम, हलत पलत ताकै आवै काम।

संगत छाड़ बिखै बिख खाई। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम।

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए सात पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़िए है जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए है जेती यार जा पड़िए जेते सास नानक लिख एक गल और हो मैं चखना चाख महला पहला
1: लिख लिख पड़िया ते ताकड़िया बहुत तीर्थ भविया ते तुलविया बहुत पहेख किया दही दुख दिया सोहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा बहाया बस्तर ना पैरे अहनस कहरे मोन गुता क्यों जागे गुरबन सुता भगव पेताना अपना किया कमाना अल मल खाई सरसाई पाई मूर्खन दे पत गवाई विण नामै किछ थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणिया दना जाने फिर पुछताणी सतगुर पहटै सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से ते ने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी पग त्रिवन।

कूड राजा, कूड प्रजा, कूड सब संसार, कूड मंडप, कूड माड़ी, कूड बैसनहार, कूड सोना, कूड रूपा, कूड पहननहार, कूड काया, कूड कपड़, कूड रूप अपार, कूड मिया, कूड बीबी, खप होए खार, कूड कूड ऐने हो लगा विसरया करतार। किसना

हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लख्या न जाई साधक सिद्ध सगल शरनाई गुर के।

गुरजहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरया न कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाई, गुर बिन मुक्त न होए। गुर

रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछा जाकी शरणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी।

सहन सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख हुए सिख दुख संबंधी नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब

सच्चा सोई। जित मुखसदा सलाहिए भगरती चार, नानक ते मुख जले तित सच्चे दरबार।

खाए दीवान कौकल में का हवा तुम मेल धर ले लेखा पीड़ छुट्टे नानक जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही तैतारिये देखे की ताया।